0: गरेको भए होइन गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्सुरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्सुरेन्स,
1: शिखर इन्सुरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423।

0: है विवेक उद्यान घास छप्पा सोर जिंदा हो फुटबल बंद कर विवेक वहाँ का हुईलन वहाँ छपचार और ना जाओ कहलन हूँ
1: ओ हेरो त उहर सब भागल पागल की का हो विवेक न एक हरी स्कूल फुटबल हेर लगता
2: देवाली मेन त सब काटल मुना
0: विवेक जिना क्या संघारू देव शांत होकर ढ्यूनी चल कर बैठो हमारा तु यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पुगेबी अ पारस तू घर दादू है न मोटरसाइकिल लेकर आए कहो
1: हो विवेक है न यहाँ खुला ठाव में सुताई ढूर झलन झुलूम निकरा खन मारी काटी ले वही है न हम भेटू फिल्म में काट ला खल सोईटी बा काटल ठाव न छो चलाई न्यूज न
0: अब मैं विवेक खाना सजिल ही ना कही वाकर कस के लीटी टाँग धीरे धीरे खोल देखू वो घरी वो मुंडी फेंक खाद दे
1: बिठारो सन मैं यह डाला विवेक का जूता वो मजा धीरे धीरे निकाल दे
3: झूर जसिन सापन का दसाई खतरनाक नहीं रहा समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मने यहाना फेब बचाई से जीठा सपवा कटलक मने यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केंद्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति बिना से जोगाई से जीठा
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाएक लाख लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाख आधिकारिक वेब पेज स्नैक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए जीठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्य में रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत सन्देश
6: सिधापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477417।

0: बुकापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा के उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हेरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं कर छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: बैंक ले कभैले कसै अवस्था मिले तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ को गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बठियाले तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जा छ सँगै बैंक को कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागी भर बैंकमी सोधौ सतर्क रहौ ठगी बठिए बचौ
5: सिद्धार्थ बैंक बठियै जनहितमी जारी सन्देश
6: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यत्नेखुक रे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आगामी 3 दिन है इस क्षेत्र में वर्षा के संभावना, सतर्कता अपनाइन नागरिक उपकरण मौसमविद के आग्रह। कैलाली के जानकी गांव पालिका में बाढ़जन्य विपद के जोखिम घटना समुदाय हेबलगर बनाईती पूर्व सूचना में समुदाय सचेत। चेतना सामुदायिक बनुआ के सहयोग से शैक्षिक गुणस्तर में सहयोग पुगल अभिभावक हुकरण के कहाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरण में पूर्व मंत्री सहित 16 जने दोषी ठहर। 23 दिन पांच स्वरूप पश्चिम के बजेट प्रदेश सभा में टेबल मनोछलफल समेत पारित प्रक्रिया भर अन्यल में। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम रहल बाकल से अब्बा सुरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी कोशी बागमती गंडकी प्रदेश में साधारणतया मौसम बदलती बा। भक्कर से कुछ स्थान में पानी फे पड़ती बा। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आज दोपहर के और रात के फे कर्णाली सुरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली क्षेत्र में फे कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्यांग सहित के मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना रहल बा। साथ ही पहाड़ी और तराई क्षेत्र में कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्यांग सहित मध्यम वर्षा हुई सेकना बाकल से कैलाली के टीकापुर आसपास क्षेत्र में फे आगामी 3 दिनसम पानी पर्ना संभावना रहल मौसमविद रोजन लामिछाने जानकारी दिने बाटे। कैलाली के जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 3, 4, 6, 7, 9 में बाढ़जन्य विपद के जोखिम रहलबा। जानकी में कर्णाली और पथरैया लदिया के बाढ़जन्य विपद से निम्टैती करलबा। बर्खा में फेसमेत ई लदिया भरी भराव होके अनियंत्रित होके ऐना बाढ़ से हरेक वर्ष संयो परिवार प्रभावित हुना करलबा। बाढ़जन्य विपद के जोखिम कम करना पालिका समुदाय के क्षमता अभिवृद्धि में जोर दै गेलवा। कर्णाली और पथरैया लदियाम के कारण हरेक समेत बर्खा में दुबान समस्या होइत वार्ड नंबर 6 स्थित के सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति लमकी पूर्वा के अध्यक्ष तथा बरघर जोग बहादुर चौधरी विपद व्यवस्थापन के बारे में अपनाकर सक्षम हुई गैलो पूर्व तैयारी के बारे में सीखल समुदाय में सूचना प्रवाह प्राथमिकता करती रहल बतोले बाटे। बहुचर्चित नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में काठमाण्डौ जिला अदालत के से पूर्व उप प्रधानमंत्री पूर्व गृहमंत्री और पूर्व सचिव सहित के उच्च पदस्थ के व्यक्ति हुकरण दोषी ठहर करती फैसला सुनायल बा। न्यायाधीश तेज बहादुर खड़का के इजलास से काली करल फैसला अनुसार यी प्रकरण में मुख्य अभियुक्त है समेत संगठित ठगी राज्य विरूद्ध की कसूर हो संगठित अपराध में सजाए हुना कहलवा। अदालत से पूर्व उप प्रधानमंत्री टोप बहादुर राय माझी पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पांडेव पूर्व गृहमंत्री के सुरक्षा सलाहकार डॉ इंद्रजीत राय हेफे मुख्य कसूर दर समेत ठहर करलवा। ऐसी के पूर्व गृहमंत्री बालकृष्ण खान भूटानी शरणार्थी के नेता टेक नारायण रिजाल खान के

0: के सचिव नरेन्द्र केसी हो समेत हज समिति के पूर्व अध्यक्ष शमशेर मिया हेफे समेत संगठित ठगी के मतियार थर करलवा और अदालत के प्रमाण के अभाव में पूर्व उप प्रधानमंत्री रायमाझी के छावा संदीप रायमाझी और पूर्व गृहमंत्री बाडल के छावा प्रतीक थापा सहित के छ जने सफाई देहलवा सफाई पैनामा और शरणार्थी समेत रामशरण केसी लक्ष्मी महर्जन उसके केशव तुलाधारो आशीष बुढ़ाथोकी रहलबाट दोषी ठहर रलक खान रायमाझी हो पांडे सहित के प्रतिवादी हुक्रन सजाय के समेत मात्र कुछ भर समेत आगामी असार 29 गते से निर्धारण करना करके अदालत से जनायल बा मुद्दा के 8 प्रतिवादी भर अबिन फे फरार रहल बाटे। खोजखबर माए घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरे को संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्य को आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलाली द्वारा जनहित में जारी संदेश। भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। डाक्टर बमबहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेंटर टीकापुर में साउन 9 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकियाट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौका को फायदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोश हुनु मुटुको धड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जीव झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि।
0: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के हिरासत मन से लागू औषध के मुद्दा में थुनुआ फरार हुई घटना में छानबीन समिति गठन कर गिल बा। घटना के छानबीन के लाख डीएसपी योगेन्द्र तिमिल सेना के संयोजक तुमा 5 सदस्यीय समिति बना गिल बा। अटवार के रात के लागू औषध के मुद्दा में पकड़ाऊ पड़लक थुनुआ संजय नागरजी हिरासत मन से फरार हुई के हो। घटना पाछे ड्यूटी में रहल प्रहरी जवान लली भंडारी है समेत निलंबन समेत करल प्रहरी से जनायल बा। प्रहरी के अनुसार फरार थुनुआ संजय नागरजी के खोजी कार्य तीव्र पारगिल बा। तलब से छानबीन समिति से घटना में लापरवाही वा समेत कमजोरी हुई नहीं हुई विषय में अध्ययन करके प्रतिवेदन पेश करना बतागिल बा। पाछक समय में सामुदायिक वनवास उपभोक्ता हुक्रन वन पैदावार बिक्री वितरण करना के साथ ही सामाजिक विकास में काम करती रहल बा। सामाजिक विकास ओर के काम में भवन निर्माण संघ संस्था है समेत सामग्री वितरण शैक्षिक गुणस्तर में सहयोग पुग्न उद्देश्य से विद्यालय सामग्री वितरण अति विपन्ना परिवार के बाल बालिका हुक्रन शैक्षिक सामग्री संघे ड्रेस वितरण हो नगर सहयोग करल बा। जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 कटासे स्थित की चेतना सामुदायिक बनवा विद्यालय के शैक्षिक गुणस्तर में सुधार करना विद्यालय से शैक्षिक सामग्री वितरण हो। अति विपन्न परिवार के बाल बालिका हुकरन फे शैक्षिक सामग्री वितरण किताब कॉपी ड्रेस लगायत की सामग्री प्रदान करल बनुआ के अध्यक्ष जनक भंडारी कहेबा सामुदायिक बनुआ से अपन बच्चा हुकरन शैक्षिक सामग्री प्रदान करल पास पढ़ना लिखना में सहयोग पुगल अभिभावक गीता बीका के कहेबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से बजट प्रस्तुत करला 23 दिन पाछे केल प्रदेश सभा में पेश समय टेबल करलबा। मंगलवार के बैठल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के बैठक में आर्थिक मामला मंत्री विक्रम सिंह धामी से आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट में अर्थ संबंधी प्रस्ताव कार्यान्वयन करना बनल विधेयक तथा सेवा समेत कार्यकलाक प्रदेश संचित कोष मन से रकम विनियोजन हो खर्च करना सम्बन्धमा बनल विधेयक सभामा टेबल करना हुल्बा। बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हीरा सार्की से महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित के थारू आयोग मधेसी आयोग मुस्लिम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिलेखो। प्रदेश सभामा बजेटमा टेबल हुल्पाछे बजेट उपर के छलफल करती औरा समेत अविनफे अनिश्चित बनलक बटवागिल्बा। बजेट सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश हुल्पाछे सभामुख भीम बहादुर भण्डारी से प्रदेश सभा समेत बैठकमा और सूचना जारी नै हुत समकेला स्थगित गरिल्बा। मन्त्री धामी से गैल असार एकमा मध्यरात के 37.70 अर्ब रूपया के बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरल रहन्। नेपाल राष्ट्र बैंक से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के मौद्रिक नीति सार्वजनिक करलबा। सार्वजनिक मौद्रिक नीति से निजी क्षेत्र में प्रभावहीन कर्जा 11% से बढ़ना लक्ष्य लेहलबा। उसतक मुद्रा स्फीति दर 5.5% समेत धरना लक्ष्य लेहलबा। मौद्रिक नीति के समेत कार्यदिशा है आगामी आर्थिक वर्ष के लाख निरंतरता देना। गवर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेल बटोले बैंक तथा वित्तीय संस्था के शाखा व्यवस्थापन और संयोजन करना समेत सहज व्यवस्थापन में आगामी वर्ष के मौद्रिक नीति से करलाक पौडेल बटोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकरण की लागत घटना आवश्यक व्यवस्था करना मौद्रिक नीति में उल्लेख करगिलवा। ओसा करके आगामी वर्ष के मौद्रिक नीति से बैंक दर नीतिगत समेत दर निक्षेप संकलन दर हो अनिवार्य नगद मौजदाता समेत वैधानिक तरलता अनुपात में समेत दर लक्ष्य नै निरन्तरता देना गवर्नर पौडेल से जानकारी दिले बाटे। खोजखर में एक घड़ी फेन से विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुनते रही सामुदायिक रेडियो टिगाप्रे एफएम।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पताल को ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
4: बाबू ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तुम्हें अब भी जाए।
6: याद गर्वी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
0: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
6: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9846477417।
0: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। संघीय सांसद के दोनों सदन के आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पारित हुई बा। प्रतिनिधि सभा के संदेश सहित के प्राप्त विनियोजन विधेयक 2083 में राष्ट्रीय सभा से फिर मंगलवार के पारित कर लखो। राष्ट्रीय सभा बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर सोनी मोआगले से निर्णय अर्था पेश कर बजट में समेत बहुमत से पारित फिर बा। यह आगे प्रतिनिधि सभा के बैठक में फिर विनियोजन विधेयक पारित हो सकल बा। इसे संघीय सांसद के दोनों सदन के बजट पारित हुई लेखो। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर वागले आर्थिक विधेयक 2083 पेश करल के हुई। ओ इजिप्त हे पराजित करती साबिक के विजेता अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करल के हो। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में समेत ठूलक खेल में इजिप्त 3-2 से पराजित करती क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना प्रवेश करल बा। खेल के पहल अग्रता भर इजिप्त से लेहल रह खेल के 15 मिनट में इब्राहिम के समेत गोल से इजिप्त पहल अग्रता लेहल रह उसके 67 मिनट में मुस्ताफा जीको के समेत गोल से थप्ती इजिप्त 2-0 से बलगर अवस्था में पुगल पाछे ओकर पाछे अर्जेंटीना के शानदार पुनरागमन हुईल के रह उसके क्रिस्टियन रोनाल्ड के क्रिस्टियन रोमे रोसे समेत 79 मिनट में गोल करती अंतर घटायल रहेकल से लियोन मेसी से समेत 83 मिनट में बराबर खेलल रहे ओकर पाछे खेल दोसरा हाफ में अतिरिक्त समय में पुगल पाछे एन्जो फर्नाडो से 90+3 मिनट में समेत निर्णायक गोल करती अर्जेंटीना है 3-2 से जीत देवाल के हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आगामी 3 दिन है इस क्षेत्र में वर्षा के संभावना सतर्कता अपनाइना नागरिक उपरण मौसमविद के आग्रह। कैलाली की जानकी गांवपालिका में बाढ़जन्य विपट जोखिम घटेना समुदाय हे बलगर बनैती पूर्व सूचना में समुदाय सचेत। चेतना सामुदायिक बनुआ के सहयोग में शैक्षिक गुणस्तर सहयोग पुगलाक अभिभावक उपकरण के कहा नक्कली शरणार्थी प्रकरण में पूर्व मंत्री सहित के 16 जाने दोषी ठहर। 23 दिन पाछे सुदूरपश्चिम के बजेट प्रदेश सभा में टेबुलो छलफल पारित प्रक्रिया भर अन्यल में बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासन सुनते विराम राम।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे ग्वज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846349261
2: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: नहीं कर मिल सर।
1: आओ आओ, तू पहले से ही हमारा झील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, टॉयलेट के अंदर आप सब मरे सर, लग के घूमत रहते हूँ, फिर चेयर से लग मतलब हल्का भी नहीं करना, मोर सब हो गए इकट्ठा पहनो तो पहले जाकेंगे।
1: मोर सब पहना चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेगा सर।
1: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा रहते कह रहो मोर सब पर देव कर से वही ना चलाए नहीं बिठा तब पर मुला से फिर वाकर में रह बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं बीच
0: सर मुआल सप्पा देखना से आ करना
1: सप्पा मुआल देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह वर्ष से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं बीच डेंटन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं जाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआलवा मार्गी सपोहना पकड़ना व खेलना जिन करी मुलक कुछ बेर बासे समी सपवा दस से था संभव हुई सम सबको फोटो खींची व पहचान कला विज्ञापन से संपर्क करी
3: पर पदंग से संबंधी पर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगे लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकती था।
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनले से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कापी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं सीख
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनंद झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417
4: पंछी पालन व्यवसाय हरुका लागी जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछी में लगने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो विगत 3 महीनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा यो रोग देखा परिरहेको छ पशु सेवा विभागबाट सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका छन् तसर्थ पंछी पालक कृषक व्यवसायीहरूले रोगको संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं रानी जमरा कुलरिया सिजन आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
2: विगत 27 वर्ष देखि सेवारत क्यूएए प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
1: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर भेडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523312 र 523949।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था?
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई या झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई या झोला उद्योग में रट गई या झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: 80% रोग पानी के कारण लग्न
4: थोपा थोपा में शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधि प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लीटर जार में सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ
3: डेलिभरी का लागि
5: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: संपर्क मोबाइल नंबर 98017 10672
4: स्वास्थ्य का लागि पानी

जिगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मिट के सलाह के बैठल सकू रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रोकन स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहत मैं मिशन के साथ भेट भाई आकाश चौधरी और मैं बाटो अपने अपने संग मैं मिशन संगे कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपनों के एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजली में विपटाल में यात्रा में जहां रहे जाए कार्यक्रम में सहभागी जनैबी कना में अवलोकन मैगर अर्जी अनुरोध और निवेदन करना चाहत हूं। तो कार्यक्रम में सहभागी जनैबी कार्यक्रम में आई भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गफ रही रमाइलो बातचीत।

हर्लिङ आफ्नो ठाउँमा कसिन पानी बर्सल काबा कसिनमा पानी के हल्ली चल्ली सुनाएकलाई कार्यक्रममा सहभागी जनाई और विशेष गरी ज्ञापन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनेकलाई पनि कार्यक्रममा आइसक थिए। कार्यक्रममा कल कर बिटो कहबीमा यी गीत सुन्ने चाहटु गीत मन पर्न के कारण यी हो दुई ठाउँ बताइबी कारण कोन एल्बम या फिल्म के हो एक बिटो नाम बताइबी और अन्तिममा एकजनाके नाम लेबिकल सेउ गीत हाम्रो आफ्नो हुकन पक्कै फेर सुनाइसक तो डायल करिए कार्यक्रममा सहभागी जनाई। कार्यक्रम के शुरूआत में हमें अपन फरमाइश के अपन रोजाई की गीत जोड़ा अपने हुकन के लग एक छोटा रमाइल गीत जोड़ी अपने हुकन के लग गीत के बाद समय नए बात डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.255 लाइन खुले बा तब सम के लग इंजॉय करी और डायल करते करिए अपन रोजल खोजल सोजल गीत सुने के लग तब सम के लग ये रमाइल गीत अपने हुकन के लग।

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतके पाछे फ्यान्सी स्वागत बा हाम्रो कोही टेलिफोन लाइन अघिबाटै बोल्कन चाहन्छु के भेटे कहाँ से बोल्कन चाहन्छु हजुर राम राम
1: हजुर राम राम
0: के बोली सीताराम जी हो
1: हजुर टीकापुर फ्रेश हाउस सीताराम चौधरी बोल्छु
0: कसिन बा सीताराम जी के हाल खबर
1: एकदम बढिया बा सर
0: सीताराम जी और बताई कौजा करके दिन बिट्टी बा
1: करम मैं तो दुकान में बैठ रहा हूँ अपन फ्रेश हाउस में
0: आज पानी कथे पड़ल अपने के ठावल
1: पानी तो आप रात के तो कई बजे से पता नहीं पानी पर बिहान तक खुद भुजल पानी अलग कर रहा क्या
0: पानी भक्कर भक्कर शुरुआत थोटर हुई है करता हुए नहीं कटवा सब कुछ आने लगा के सेक डर नहीं हमारे हर लिंग पानी भक्कर भक्कर थोटर थोटर थोटर देखा पर हस करता ना
1: हाँ भरखा तो आए तो आप मन धान लगा से करता है अभी तो पानी ऐसे नहीं हो कर रहे क्या
0: सोचल अशक पानी पहले का अशक बरखा थे नहीं रहेगी पहले का अशक पानी था नहीं रहेगी की कहा ना सीताराम जी
1: सब कुछ मने तो मने बदल नहीं बरखा थे बदल गए आप मने तो बदल गए नहीं बदल गए नहीं
0: बरखा से बदल गए
1: बदल गए समय बदल गए
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल इस सुहाना मौसम में आज सुहाना मौसम बा पलगड़ी रमाइलो बा शीतर शीतर बा और दिन से कुछ कुछ आज हमने अपने है कौन गीत सुनाई
1: मैं रात कृष्ण गैले बात धान लगेबी छुपर छुपर तोकतारी पा रहे महीन सुना के कना
0: लगेबी बिहार छुपुक छुपुक छुपुक नहीं
1: हाँ
0: जी हमारे गीत जोड़ा अपने लगी गीत मन पर ना के दुठो कारण बताए काहे गीत मन पर अपने है
1: आप सीजन अनुसार गाना बनल बा ये आप जस्ते धान आप सब लगाए खूब चलल बा टिकटॉक में डब्बे मारे महीन से खूब मन पड़ल टिकटॉक
0: ओके तो ये गीत सही किन सुनाई चाहती एक जन हम के नाम ली
1: ये हमारे एक संघर्ष बाटा है बाकी

0: कलेश राम संघरिया उठे गड्ढा पे जो मैं गीत गए थे कलेश राम संघरिया ही सुनाई था तुम्हें।
1: ओके अलग अलग विदा हुई राम राम
0: राम राम
2: वहाँ फोन करें सीताराम दहित जी रमायल होगा फिर वहाँ से अपने हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी कार्यक्रम में अटे कर भी अति बड़े गीत जोड़ब लगे वो बिहार छुपक छुपक छुपक छुपक रमायलो गीत अपने अपन रोजल खोजल सोचल मन पर गीत सुने लगा अटे कर भी तत्सम लगा इंजॉय करी रमायलो गीत।

0: लगैबो बिहार छतरी ओर के छुपक छुपक छुपक छुपक छुप बिल्कुल रमाइलो गीत जोड़ने कार्यक्रम आप लोगों के लिए अपने व्यापन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुना मन हुई कार्यक्रम में सहभागी हुई ना मन हुई कल से हमें कॉल करी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला भा कार्यक्रम में सहभागी जनवी कल से अपने को हमार रमाइलो गप हुई तो संगे विशेष करके आज दिन अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनना हो तो अपने अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनना मन हुई कल से हमन कॉल करे पना रहा था हमारे स्टूडियो के लाइन में विशेष करके अपने के जस्ता थारू भाषा के कोई भी गीत सुनना मन बा कल से कार्यक्रम में सहभागी जने भी और कार्यक्रम में आईडी को एलवाट लाइन में बोल करना चाहम हजूर राम राम ओ कोई टेलीफोन लाइन में शायद नहीं होने लगा मीन ओके कार्यक्रम में सहभागी जनता कर भी सुने 091-5-61-255 था 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला बा मैं अपने कार्यक्रम के नियम बताई तो कार्यक्रम में कॉल कर भी कल से थारू भाषा के कोई भी गीत मतलब चोइस करना रहा यानी कि रोजना रहा छन्ना रहा और कार्यक्रम में कह भी मैं ई गीत सुनने चाहता हूँ गीत के बोल ई हो गीत मन पड़ने के कारण ई हो और अंतिम में चाहिँ मतलब दुठो कारण बताइबी ई कारण से मिन मन परत कल से और एक जन के नाम ले भी कल से हमरे वो गीत अपने है सुना तो अपने के थारू भाषा के गीत सुन्न मन बाकल से कार्यक्रम में सहभागी जनाई ओकलक लाइन हमारे खुला कैले बाटी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन खुला बा फटाफट डायल कर दिए कार्यक्रम में सहभागी जनाबी करीब करीब 1:45 बजे समय यात्रा कर देवी 1:45 बजे समय सहभागी जना देवी 1:45 बजे समय अपने पर हमारे रमाइल सहभागिता रही कहे कि सुहाना सुहाना मौसम में सुहाना सुहाना गीत सुहाना सुहाना गफ सुहाना सुहाना अपने पर हमारी यात्रा रही तो फटाफट डायल कर भी कोई लाइन में आल बटे बोल करना चाहम हजूर राम राम के बोल दी कहाँ से फुला राम कली फुला राम जी कैसी बा हाल खबर बड़ा ढेर दिन पाछे याद कर ली
1: सुनकी तो सुनती रहूंगी कार्यक्रम
0: तर संपर्क में चाहिए आज अना मन लागल ने ढेर दिन पाछे रिन्यू कर दिली कार्यक्रम में एकदम खुशी लागल और बताए कौन सा करके दिन बीते थी आजकल
1: आजकल बस एक करोड़ और आ रहा है आप 27 गते हर दफा बाहर
0: 27 गते शनिवार वहाँ बर्दिया और हिमालीपुर और लगभग लगभग सबको खेतवा वहाँ लगभग लगभग सेक डरने तब तो एकदम आजकल को खेतवा सेक किया खेतवा हेरे जाए खेतवा में पानी पुगल कि नहीं हेरना कि काम हो तो अब
1: नहीं
0: कार्यक्रम में भेज दिन पास याद कर ली समझली एकदम खुशी लगे आज फुलाराम जी है हमारे कब्जा गीत सुनाई कौन गीत सुनाई थारू भाषा के
1: सुना दी
0: कौन वाला सजना सुनना मन बा आपने है बताई
1: कौन वाला अरे परी गई जेठ के महीना वाला
0: परी ये लागी गई ला जेठ के महीना सोमति थारू और तेसरा सतगंव की आवाज में नहीं
1: हाजिर
0: ओके अनमोल गहना से अनमोल गहना एल्बम से लहल गीत अपने हुकन हमने जोड़ा भी गीत अब ये गीत मन पड़ने के दूठो कारण बताए फुलाराम जी
1: अभी मौसम अनुसार के खूब सुहाई कनास लागल बा
0: मौसम फिर कुछ सुहाना सुहाना बा नहीं तब मारे से फिर गीत सुन ले से और सुहाना लगी कि जिसने लार ने ओके क्यों सुने भी एक जन के नाम ली
1: विशेष के हमारे थे बुरी है बा
0: आज की नाम लिख परस का हूँ कार्यक्रम में
1: बुढ़े ना बोली
0: नाम तो लिख परस तो आप विशेष करके मैं एक जन के नाम ले भी कह के कट मुझे
1: ठीक है
0: चौधरी है ओके विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: वहाँ फोन कैले रही हिमालीपुर बर्दिया से फुला राम कुचिला वहाँ से रमाइलो गीत गफ हुई और वहाँ के फरमाइश गीत बा लागी गई नहीं जेठा के महीना रे पिया हाली घरा वो रमाइलो गीत जोड़ हमारे गीत के पास में नहीं बात अपने डायल करते कर भी सुनने का 091-5-61-255 लाइन खोलेगा तब समय इन्जॉय करी रमाइलो गीत से

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रममा हाम्रो भर्खर गीत जोली एकटा सजना गीत हि बरमासी गीत हो का प्रत्येक महिना के रहस्य बोकल गीत प्रत्येक महिना न हाम्रो समुदायमे थारू समुदायमे काका कर्थी करा चित हो सबको चीज चित्रण करल गीत हो का यी जस्तो हाम्रो वैशाख जेठ असार श्रावण मे काका कर्थी उसके असोज कार्तिक मंगसिर पुष माघ मे काका कर्थी फागुन चैत म काका कर्थी सारा चीज यी गीतमा चाहिँ बताइल बा है तमारे यी गीत सुन दिगल से आपने पक्के पता चल जाएगी हमार इतिहास का हो हमार मतलब रहन सहन का हो हमार संस्कार संस्कृति का हो अपने हुके पता पाई जीबी एकदमै मजा गीत के अलग हमार छनले रहे मजा गीत फुलराम खुशीला जी बर्दिया हिमालीपुर से वहां है हमारे एकदम ढेर धन्यवाद देव और गायक कलाकार सोमती थारू और दिशरा सतगवा जी है हमारे ढेर धन्यवाद देव और अनमोल गहना एल्बम से हमारे गीत अपने के संगे सुनैली डायल करते भी सुने कानवे 5 61 255 अर्थात 0915612585 लाइन खोले क्विटेड फोन लाइन में आगे बात में बोल करना चाहूँ। हजुर राम राम
1: राम राम
0: के बोल रही कहाँ से चुलबुल पांडे हो
1: हजुर मैं यहाँ झुलुंगे पुल में से
0: झुलुंगे पुल कौन झुलुंगे पुल कर्नाली लदिया के झुलुंगे पुल हो
1: हजुर हजुर हजुर
0: कैसे बा कैसे आज झुलुंगे पुल घूमना मन लागिल का
1: ना यहाँ काम करे आज कब एक मारे
0: झुलुंगे पुल में कटर रामायलो हुई था आजकल वहाँ लिंग कट्ठक मन ही
1: बिल्कुल होता इतना ही बाजा लेके आयल बात है रे
0: तो पानी पर हंस करता था तब उनपे बाजा लेके पिकनिक उकनिक खाई गिला थे क्या रामायलो करे
1: अब भाई वो तो वही नहीं जाना ही है रे हमरे भर यहाँ ढलाई करे आलाती है रे
0: ओहो भीड़ भाड़ में कहना वहाँ
1: हजुर हजुर
0: ओके तो धरान शुरू नहीं हो अभी
1: अभी नहीं हिल हो रे
0: कई बजे से शुरू ही ना हो ढलान
1: हुई ना तो 5 बजे से रहे है अब 2 बजे लागल कहे पड़ल
0: तब तो आज ढलान कसिन हो तो नहीं हुई ना हंसता की हुई ना हंसबा
1: हुई ना हंसबा वही हेरी अब भात उत खा के करब कहे कर जाए हेरी और की मनाई
0: तब तो आज राते बिराते हो जाए ना हमार सुबुल पांडे जी के
1: हजुर हजुर
0: राते बिराते ढलान ओरैती के तो ढलान ओरा के शक्ति के तो पार्टी रहत का हूँ सुनने रहूँ मैं तो हो
1: पार्टी तो पार्टी रहत मोना ये सरकारी घर हो है री प्राइवेट में रहत है री सरकारी घर ही मोटवा नए रहत के कना
0: ओके कार्यक्रम में सब आगे जाने की खुशी लागल आज हमरे अपने हैं कौन की सुनाई चुलबुल पांडे जी
1: ओ कागत है अन्नो चौधरी को माया मोहनी लगे लो की जादू मंत्र मरलो अलग ना
0: माया मोहनी लगे लो की ओके गीत जोरा ई गीत जोरा गीत मन पर के दुई ठो कारण
1: ई गाना तनिक मन पर एस कर केतु की सुनाई में मन पर एस कर कह पड़ल
0: तब हमारे गीत सुनना चाहती
1: हजुर
0: ओके आई किन सुनाई दी एकदम के नाम ली
1: ई मोर मोर संग बात है वो ड्राइवर वो बात है प्रदीप चौधरी है
0: हजुर राधक लगी राम राम
1: राम
0: वहाँ फोन गए रही चुलबुल पांडे जी रमायलो का फिर वहाँ के मन पर गीत बा माया मोहनी लगैलो के जादू चलैलो ओके गीत जोड़ा गीत के पास समय नहीं बाटू रेडियो छोड़कर कहूं पे नहीं जेबी आपने उनके अपन मन परल रोजल खोजल सोचल गीत सुनना मन हुई थारू भाषा के कल से हमन कॉल करी सुने 1965612155 अर्थात 0915612555 लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल करी और करीब करीब 1:45 बजे से हमारे संगे यात्रा करके सहभागी जनाये का मैं आप लोगों ने अर्जी करती गीत जोड़ा गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते कर भी सुनने 1915612155 लाइन खुलेगा

0: हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतके पात्र फेरि स्वागत बा कति अब ठिबर के छ हाम्रो व्यापारिक ब्रेक ओर जाए व्यापारिक विश्राम व्यापारिक विश्राम के पास समय नै बटु रेडियो छोडके कहौँ फेरि जेबी तब समय लाग एकै खेची व्यापारिक विश्राम
1: आइ विवेक उठ्यान खासक छपा सोर जिन्छ हो
2: है दे मर्गिनु मर्गिनु
1: है सँगै एक फेरि फुटबल बन्द गर त विवेक खान वहाँ आविदन वहाँ छक्क्यारो नाचाउ कहदन हुँ
3: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पातल कि का हो विवेक खान ए खरि स्कुले फुटबल ह्याराइ लग्छ झन् का जस्ता पो आपर्लन्
2: देउहाली मेन त सप काटल मुना
1: विवेक जिना क्या सङ्घारू देउ साँझ पक्का ढिउनी चल्क बैठ हाम्रा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैबी ऐ पारस तू घर डाडु हन मोटरसाइकल देखाएको
3: हो
1: त
3: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताए यो झल्याङ झुलुङ निकराख न मुहारी काँपीले ओही हन हौडी हेटु फिल्लीमा काटला खल सोइटी बा काटल ठाउँमा न छो चलाइ निहुड न
1: अब मै विवेक खाना सजिल हुना कै खल वाकर कसकेला पेटी ता धीरे धीरे खोल देखु ओ घरी वो मुन्द्री फेक हार देहन
3: बिठा रोसन मै यह जाला विवेक का जुत्ता वो मजा धीरे धीरे निकाल देहन
1: यूर जसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रहा समय मजो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाँ फे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लग्ना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कबू का पिए कबू पेन्सिले कबू झल फटाका आज का कना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई कबू पेन्सिल हेरा कई कबू झोले फटा कई बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: घर त जेन तेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98481443326 जमरापारी टिकापुर कैलाली
6: गरेको भए होइन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
7: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
6: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
7: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
6: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
7: ई सेवा सबै सधैँ सँगै
8: हजुर व्यापारिक विश्रामकै पाछ फेन स्वागत भयो लगभग लगभग कार्यक्रम निर्धारित समय डगा काटे लागल त्रबाट रेडियो सुनका साथ दिले आत्मगन धन्यवाद टेक्नो बेटके साथ दिया भाइ आकाश चौधरी धन्यवाद और कलकर सबको जहान धन्यवाद द्वितीय अन्तिम एक्टर रमाइलो गीत छतीमा मिसिनाका चाहम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पल शुभ रहे

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
1: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी, जब सम हमरे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी, भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाग, सक्कु जाने सहयोग करी।
3: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।
4: कार्यक्रम मझेरी
5: मझेरी मझेरी
6: भैया ना करा रेडू बिगरी
7: ना का मम्मी टीकापुर FM से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
4: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाए लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाए लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।
8: बदरी उम्रे हस उमरती रहे सदा तुहार उमरिया योग योग बासी रहो तू रोजल दुल्हनिया जब जरी मोरे चिता तो आगे के रंग लाल रही जब जरी मोरे चिता तो आगे के रंग लाल रही कफन उठा के हेर लो मनमती सिर्फ तुम्हारे नाम रही।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल
0: तू वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
2: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: चेली हेदी दे बालाय लोटी पड़े बुढ़े के बैंक को विवरण दिया पैसा खाता में आई जान बुढ़े
5: धोई दे बा तुमने लोटी भर रही थी अब
6: आछी ना क्या हो रे चेली लोटरी पड़े तो निको हो
5: कभी न भरिया लोटी कसरी पड़न छ बा ईशा मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर कायमीले आयाले कबै जनपतिया फोने आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठियै जनहितमी जारी सन्देश
7: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: and we need to cut 600 kilo meat.
1: नरेन्द्रजु मैले आफ्नो फोन आइकी डर त्याग गइनु है भौजी कहाँ बाटी
2: उ गुन्डीमा सुटल बाटी बाबु चोली नभरि
1: भौजी कहाँ छ काटन अपनाउन हरक आदर पादर जो सफा सुखर बनाएर बाटी त तर फेरि काटी चाहिँ डारल ना अपनाउन
3: यहाँ पोलिको कत लगो नानी अपनाइ बोलेर छैन खबर त गर्न बाटा कटा बेर मको आपुम ना हो
1: ना ते भौजी हाम्रो बाटी अपनाउन कुछ नि हुई दिन गुहारा जिन्छ को नरेश दाडु एम्बुलेन्स लिन आएको मैले लागे चिट्ठा नगर केक्रो मोटरसाइकल बाको लि उहीमा बैठा भाउजी होइन सर्पडेन्स उपचार केन्द्र लैजिन तयारी गर पर
2: यी बेलुका खैन जात फे दिए न्यू इट ना स्वयंसेविका दिदी
1: हो हो अब न ठिक कली डाक्टर र निकट सम गेरेमेन कुछ थियो खवाइली हुई
4: सपुवा कट्टीकी सहज वातावरण बनाएकलाग सपुवा कटलक अङ्ग हर्न स्थिर बनिना प्रयास खर पठा सम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल फल करारी बेरम्या अप्रेल से झन समस्या बिना भूल कोशिश बेरम्या शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपोकर लगठाव से ऊपर दौड़ी ले कस खब नाथे कठ अशी कर्ण से लगत संसार में समस्या हुई सीठा यही ले करबेल सपुआ दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सीठा
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पत्ता में एक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेजिठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अजि गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाट अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 98486 39261

सामुदायिक रेडियो टीका आफू एफएमकै संजय 5 बजे थारू भाषाकै खोज खबरमा अपनीहरूको स्वागत बा। खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मैला सम्र पात्र और नेपाली पात्र में फेसुन्टी ढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाई हपिटल ईंधन के मूल्य घटल ई रिक्शा टेम्पो के भाड़ा बढ़ल दुई विधेयक दफावार छलफल के लायक स्वीकृत अर्जेन्टिना के रोमांचक गीत खबर। टीकापुर अस्पताल के प्रयोगशाला इंचार्ज उमेश बजगाई के ऊपर कुटपीट हुआ। मंगलवार दिन के अस्पताल के आंतरिक व्यवस्थापन के विषय में हुलक छलफल में विवाद बहल पाछ। प्रयोगशाला प्रमुख बजगाई अस्पताल के फिजियोथेरापिस्ट अनिल तिवारी कुटपीट करलबाट अस्पताल प्रयोग प्रशासन के अनुसार प्रशासन कक्ष में हाथ लाल की स्थिति हुल पाछ। तिवारी यहां बाहर पठैला रला सेफे कुछ बेर बजगाई बाहर निकल पाछ। तिवारी आक्रमण कलक खुल रह बजगाई कुटपीट करना तिवारी विरूद्ध के कार्यवाही कला अस्पताल प्रशासन निवेदन दिहल पाछ। प्रशासन सीसीटीवी फुटेज सहित इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर में पठैलावा। फुटेज में बजगाई बाहर निकल बेला देखल पाछ तिवारी में कुत्ती अलग पिटना लगलग बजगाई प्रतिकार कर खोज को अन्य कर्मचारी अलग रोक के दृश्य दिखाई गई। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर के प्रहरी प्रमुख नए परीक्षक प्रकाश दागी अब तिवारी प्रहरी कार्यालय में धरके दुनुपक्ष और अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष संग बुझना काम होती दुनुपक्ष मिलना घर जैनाओ नई मिलना कानून अके अनुसार कार्यवाही आघा बढ़ना बोटिल बाट तिवारी प्रयोगशाला के कर्मचारी विदा के दिनो ओभरटाइम के नाम मध्य सुविधा लेलक आरोप लगेल रलसेफे। प्रयोगशाला प्रमुख आपने एक विभाग के कर्मचारी हुलक सफ्टवेयर में रेकर्ड हुलक काम अनुसार प्रशासन दिलक सुविधा पहले कोटिल बाट कुटपीट में हुलक। प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाई आपने बार बार दुर्व्यवहार हुटी रहक न्याय के प्रत्यक्ष मरलक फे बोटिल बाट। नेपाल आयल निगम ईंधन के मूल्य घटेलक एक हफ्ता भीतर बढ़ी समय में बीच सकलवा। सामान्यत ईंधन के मूल्य घटलक यातायात खर्च में राहत महसूस होना पक्ष तर सप्तरी के राशि विराश में अक विपरीत अवस्था डीजल व पेट्रोल में निर्भर नई हो कि विद्युत बैटरी मशीन संचालन होना सीसी रिक्शा वो ई रिक्शा के यात्रु मशीन भाड़ा उल्टा बढ़ाइल पहले प्रति व्यक्ति न्यूनतम 20 रूपया लेटी अहिले लोकल भाड़ा अब 30 रूपया में पुगल बा। आधिकारिक निर्णय व स्थानीय तह के स्वीकृत बेकर नई अधिकांश सी रिक्शा चालक के देर गुनासम भाड़ा असुन्ना हुल पाछ यात्रु मार पल बाट। स्थानीय बजार में सुन के चांदी मूल्य घटलवा। मंगलवार के तुलना में सुन के तोलामा रू 900 चांदी के रू 55 ले घटलवा। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला रू 2,87,100 तथा उत्तर परिमाण के उज्जर धातु चांदी के मूल्य रू 4,500 कायम हुई। मंगलवार छापावाल सुन के प्रति तोला रू 2,88,000 उत्तर

0: खुश खबर में फिर से विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में
2: यही असार 27 गते शनिवार का दिन
1: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार
1: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
3: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
3: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
4: कहाँ हुनु भाइ, टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
3: अब त म ढुक्क।
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
4: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टीकापुर, कैलाली।
6: के तपाईँलाई किचन, वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
7: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस, टीकापुर, कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा खेल खबर। इजिप्ट पराजित गर्ती साबिक विजेता अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2026 के क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश कलबा। अमेरिका के एटलान्टा स्टेडियममा आशुल खेलमा इजिप्ट 3-2 पराजित गर्ती अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश कलबा। खेलमा पहिलो अग्रता हुलसेफे इजिप्टले लग रहे। खेलके 15 मिनटमा यासर इब्राहिम हिमकल गोलमसी इजिप्ट पहिलो अग्रता लिलबा। खेलके 67 मिनटमा मुस्ताफा जीको गोल ठप्पी इजिप्ट 2-0 के बलगर अवस्थामा पुगेल। ओकर पाछा अर्जेन्टिनाकी शानदार पुनरागमन कल क्रिस्टियन रोमेरोले खेल 79 मिनटमा गोल गर्दै अन्तर घटेलसे फेरि नियोनल मेस्सी खेल 83 मिनटमा बराबरी गोल गर्ल। ओकर पाछा खेल दोस्रो हाफकी अतिरिक्त समयमा पुगल पाछा एन्जो फर्नान्डेज 93 मिनटमा निर्णायक गोल गर्दै अर्जेन्टिना 3-2 के जित दिलेल बाट। यस समाचारसँग खोज खबर गरी दिनासे पहिले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर से एक चोपुर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रमुख उमेश बजगाहे पिग्ल। ईंधन के मूल्य घटल, ई रिक्शा टेम्पो के भाड़ा बढ़ल। दुई विधेयक दफा पर छलफल के लायक स्वीकृत। अर्जेन्टिना के रोमांच अद्वित। डिटा बक्ला खोज खबर अथवा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद। डिटा बक्ला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई टू यहाँ पास 6 बजे के खोज खबर सुन सकी सामुदायिक रेडियो टीका प्रशासन सुनती रवि राम राम।
8: रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्य बात देखाओ तो देखाओ तो
9: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं काकर लक्ष्य खा देती अपना
8: एक तो तपा का मुर्गी में फारक है लट्ठी से डूरे से बक्सा की आनो हरी छट्टा
9: तापन घिसका चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस आकर बिहन घर भीतर आए लागी कल से भगई दी
8: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाई खोज लखो का
9: आरम में कीड़ा फटिंगा मुँह साफ किर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा पा तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बिहन अपना दाठी डूर रिना
8: हो बिना था का करना हो सपो देखती कि डर नागा लगना रही था देव सपो तो अपन घूम का बारी वो कर गिनता
9: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुकर फिर अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग काम दस न कर था
10: सापन से दूर रही सापन रिस नी लगाई व नी रिस के साप मन देख डरे था नी चला खा दूर रहना से साप नी दस्त तर मुकर खेना खाजा बाहर निस्कर बेना मत घास काटा बेल छाल बेल ज्यांगा बेल छू बेल से मन वही मार्गवार बाटा कना सबस का प्रतिरक्षा कना क्रम में साप दस लाख रठ मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का कर बेल फिर साप दस लाख रठ
11: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
13: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
14: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का न घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टा फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहो र घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानियों काम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हौ सामुएल ज्वेलर्स न घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 98486 39 261

भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध गरी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: उही सबै पेपर अरूको सकिया हो?
2: अँ सकियो।
1: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी।
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकमको अफिस जाइबर ब्लक गरिबर आयौ।
1: उही बैंकमी
2: बैंकमी
1: ता
2: क्याई अद्दु पड्यो भ?
1: त्यो त अद्दु पढन्छ भ। आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल्नु वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई जानकारी दिनु पर्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमै पुग्दो बठे सचेत बनौ,
2: सतर्क रहौ, ठगी बठै बचौ।
3: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमै जारी सन्देश।
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बातू। मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना पटा सुगुर बनैला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में,
2: रत गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: टीकापुर नगर पालिका को अत्यंत जरूरी सूचना, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटना घटेको 35 दिन भित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउं। विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
1: भैया न करा रेडू बिगड़ी
2: न का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आईटा वो प्रतिभा सुनाए लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाए लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।